0: 忙用胸卷蓝笔托学头发下卷呢如今南开老家碰顿尿地的人马在月底忙搓嘴也有远的党下把准的写笔大家下卷中的我来看农民年龄看个天气恰空讲人民也都接近着月不是我呢中错几个我提党样呢胸卷你提没那几个月呢他是么干的一讲的有的忙搓全用了偏比下把就将着写你这个写呢第二北京龙镇年轻来讲，看不见龙镇家，我等你就比雪浪西边来才能。北京那些种田的，半管中下种香，阿拉看农民胸卷年轻们呐，南开了林有些的，蒙提的第一个呢，开的下几银币，接近三百，该是些。
1: 咱忙做不干的，这个做不，年底不着的地产的，他年底跟工地这个车间看着这个那个，听谈不年底的。yāng tāg lai tāng zōg sāma, tāng tāng bā rāng gā rāñī gā sāma, tā rāñī lī gīrsēm tā tāwa tēnā mēli tā. Tā ngā rūg tāng tāng bā kēpīng tōp tāp shī tāni, ñam dēp tā tō mā tsōg gā tā tāng tā yā pō tsuk dō mā tā. Tā tsuk pēnā rāng gā lō tōng rōng chī, rāñī gā tsuk chē chē hiyo nā, tā rāñī gā tsī tēn rō yu mā gā, chē tāng chī nā mā tsōg lī lāng chōg lā lāng sōg, mā tsōg lā kēpīng dōp tā, rāñī yā rāng rā kēpīng tōp mē kā, tā rāñī kā rā lū tōp mā gā. तो रां करी तो ना लेकिन चांस चेंडी ना तो तेरी तो कैबिन तो तो ना तो चांबो यानी क्या बात है तो उन्हीं मावा ना तो तो चीज़ों को तो पन्ना न्याम दे ब्रिंगे मां दा ता ये ना न्याम दे ड्रीम लोग ड्रीम ना
2: तो
1: मां बोले तो ता ते ड्रीम लोग ड्रीम ना तो न्याम दे मां दा तें तां बात है तां तुम कौन ठीक तुक सामनो को ना तो ना जों तां वो ना मैं ना ता चां दें के सामनो लक्षण सांग मत ता मांसो के ची दल लिया सांग सांग मांसो ता केवल तुम ना रानी कांगे से ठहर ना ता सो तबले ची आ सामने के ता सामनो रो या तुम लोग को दू ता तो पैना मांसो के ईशी तो जीरो ता तरंग करता है ना गेम में मरी चांगियों में बा गुण मत दुनिया चाहते तो लिता तरंग करता है नीटर ना तो सा सोंग दियो रे मरी चांगियों में
2: ला
1: तो चोंबा का ही के से थे एनी ता दी
2: लो ओ ता मेसा मे मांग आयो ना मे गिर का पंदे या मायोरो
1: मायोरो
2: ला सुनस
1: हां ता चोंबा क्यों है ना यहां जे तो सवाल से मिटे रहा मेरे ता ता ता ना तो बेद मा क्या बोलते ना हो मा तो तो ना
2: नो
1: मे से नी चुंग जीरो ता ता मा तो लो से ना तो क्या पता ना ता चोंबा ले पेना कां द सी ख्यु छे मे ना ना तो तो ता ना ना तो तल ती तो कर को छे ती यो दी ता बेद पेन दी छे ह्यु ना दी छे ता तो से सो मो सो गत दो तो दाम त छि दिया ता तरंगर तो को मन क्याम क्यू करे मेल नियम दे रिया लु छे ना ओंगे मा क्याम क्यू छि देन ना ता पेना लुम थ्यु गे दंगो सु गे जर का ले गुंग ला सो ब द जन शंग को दु छि या ला था मा ल म दो तो दाम ना छु मा तेरी ओ ना ते हिं ग त यांग सु गे जर का बे छि ये दाम जो मारे जर का दन रवा ल सो ना ले गा रा दे ना तो छ त सो तो दाम छि दा त छे का सा मे जो मा छे का जो ना ते ल मु सु गे या या सा जर का मा तेरी ता तो छि ते सो ग गा नि त मु सु ग म दो तो दाम ते मन क्याम छो छ लोक पु सो ना ता मु सु ग ते छिन रे लोन कोर मेग नन क्यु मुन नर छ जो ग न्याम न्या ना ले गा मा ले न जो रे ता छु नर छ जो ग ये ना क्यु त जो ग ला त ल म ह्यान द नि र क्यों छि दे रे ति मु जु ग्रो के ब त त प कर मा त प ति दु रे को वा को का ले के ग ल त ति मो
2: ना
1: को ला पार कर मा दे दु तो मु ते पेना पेन दे को ला पेन दे तो यो ना मा जी छे पे सोन क्या ग न तो
2: यो रे ता जे जे यो सा नि को सो सु ग ले ग
1: रो सो सो ले ग रो ता पार कर मा दे दि ओ ना ता या मा नि छ मे ग ते ग रो ता तो छ सो मु सो ग ता पे गे नो तो छ सो तो सो ता तं बे सो कन यो ग यान ते जी मा ते ता लो मो चुप दु सा तो सो दे रे ता जे सो दे ता इन ना दी ग ना तरल से का लि थे मा न्यु ल मा न्यान का थे मा न्यु ल मा येन ना येन का तं जी छ छे देन छ सो छ ता कां दो रे ना लोजु ले छेन मि लोजु जो तों जे मा मो सो ग न्या न्या दि ने ता बा रो
2: जे जे
1: दी ग ना तरा का छ दे ते येन का ले छे देन छ सो तो सो लिग दि छि ता रु ग पा दे ता लिग दि थिंग मा सो मि सो ता लिंग छे ता थिंग मा सो बा ते ता ने थिंग मा सो बा दि ना तरा ल बेद ता लोजु दि ग ना ले दे ल ग ला दि ग ने दो क्रे मा ल पा तो सर वे ग दि ग रो ता ता मा से ते ता ता दो जे रो
2: जे जे जे
1: दे दि ग ग ल ग ना ये ना या ती ना तरा का छे नोर दे छे ता छे ता फिर ता नु छे दि लांग ग म ता ता ता क्रे मा ल ता ले
2: ओ
1: न्याम न्यो रो ता क्रे मा ल लिख छो छी सो ता मन थु जो ग न्याम न्या ती ग ना तरा ता बे दे नु छ ग ता जो न छ सो ग ग क्यों चारी लाना ता जिम्मे के लोग या निभे के बैंडा मिक्सी के गांव कोम्बिंग चेंबो के ता नौकरी न्याम्यर के लिए ये ले जोग ता तो निंतो मान्यम के गांव लिता या तो या तो उन्हीं के ता नौकरी के लिए का तंदरुस्त चाहिए ता देखो
2: ना सोच रही ना सोच रही ला
0: सिंगर रोबो दंबा तीन दिन लेचिन जे दो चार दिन चांद दिन जो जी लेचिन 다 좀 마치 이제